0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी
1: साथमा
2: डिजिटल कलर तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलू दुपुर नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: जापानीज भाषा पढ़े जापान चौकी दीदी गांव में जापानीज भाषा पढ़े
1: खोजते हिंदी संसार बिग्री बुरु कुन ठाउँमा पढ़ाई होने चाहिए मताइदी
0: मेरे तनाव चाहिए यही हो जापान जाने कुन इंस्टिट्यूट में राम्रो पढ़ाई होनी के प्रोसेस कर ठा न पाए तनाव में छु हो
1: अब चिंता न मांगा ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट प्रोविंस जापानीज भाषा पढ़ने अनि जापान जाने
0: एक इंस्टिट्यूट में पढ़ने तो अरुण छह तो पढ़ने ठा
1: ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट में अरुण को भाग छुट्टी विशेषता यहां जापान बाट उच्च शिक्षा हासिल करता तथा जापानी शिक्षक भाषा कक्षा पढ़ाने के साथ ही साप्ताहिक यूनिट टेस्ट कक्षा छुट्टी में इसे बिना झंझट जापान जाना प्रशिक्षण इसका साथ ही कम मार्क्स लिया कम सीपी लिया बैकलाग पास भैया जापान में पढ़ना जाना अप्लाई कर जापान को टोकियो ओसाका नागोया फुकुओका लगायत का शहर में जाने सुविधा भी उपलब्ध
0: सब कुरा का सुविधा तो था दीदी कक्षा संचालन में कति छिटो हुनुहुन्छ
1: सुनकांक्षा इस इंस्टिट्यूट में जापानीज भाषा कक्षा बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म नियमित भइरहेका छन् त्यसैले आफू सो सुरक्षित गरिहालेका छन्
0: दीदी म त हिँड्दै ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट में तपाईहरु पनि आउनुस् है हजुर सबैको विश्वासी र धरपटी जापानीज भाषा पढ़ाने इंस्टिट्यूट ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट जाबेन केन चाओ छैटुलतला काठमाडौँ संपर्क
2: 98550 17979
0: र 01592 26 16 वेबसाइट www.obgi.edu.np ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टिट्यूट ओबीजीआई एजुकेशन कंसल्टेंसी नेपाल चारहन चुच्चे पार्टी काठमाडौँ
3: मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जघन्य अपराध हो
4: तपाईँकै चिन्जानको व्यक्ति वा अरू कसैले रोजगारी दिने नाममा प्रलोभन नपारी लडाई सकाई अवैधानिक रूपमा विदेशमा पुर्याउलान् होस् गरौं कसैले यस्तो लोभ देखाए घर परिवार आफन्त र वडा कार्यालयमा जानकारी दिउन्
3: बेचबिखन र ओसार पसारबाट बचौं सुशिकौं र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाऊ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको रोकथाम गरी नागरिक दायित्व पूरा गरौं
5: नेपाल सरकार विज्ञापन हो
6: नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुख वितरण केन्द्र को सार्वजनिक
7: संपूर्ण विद्युत उपभोक्ता महानुभावहरू में विद्युत सुरक्षा तथा चेतनामूलक संदेश को लागि यो सूचना जारी गरिएको छ
6: विद्युत का पुल तार ट्रान्सफर्मर तथा अन्य विद्युतीय संरचनाहरूबाट सधैं टाढा रहनुहोस् भिजेको हातले विद्युतीय सामग्री नछुनुहोस् र बाल बालिकालाई विद्युतीय जोखिमबाट बचाउनुहोस् विद्युत सेवा निरन्तर र भरपर्दो बनाउन आफ्नो विद्युत महसुल तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्नुहोस् याद राख्नुहोस् 60 दिनभन्दा बढी विद्युत महसुल भुक्तानी नभएमा दिउँसोकै समयमा विद्युत लाइन काटिनेछ
8: विद्युत चोरी कानून विपरीत दण्डनीय अपराध हो यसले दुर्घटना भ्रमण स्थिति तथा विद्युत सेवामा अवरोध निकाल्छ चोरी देखिमा कानून कार्यवाहीको निष्ठामा आगो लागेको तार नेटवर्क ट्रान्सफर्मर समस्या आएको वा कुनै पनि विद्युतीय जोखिम देखिएमा तुरन्त जानकारी गराई ठूलो दुर्घटना हुनबाट रोक्नुहोस्
6: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कार्यालय प्रमुख 98552 85 32 26 प्राविधिक प्रमुख 98552 85 27 सूचना अधिकारी 98552 85 12 26 र काउन्टर 0832 54 03
8: समय नै महसुस हुन उचाउ परिस्थिति निर्माण गरौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सुनिश्चितमा सही सन्देश

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 MHz
2: तथा ज्वालामय अफसेट ब्रेज सोलू दुर्कुम नगर पालिका 5 सोलू।

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलुदुर्गु नगरपालिका ५ सोलुखुम्बु।

0: पुलिस दमकल एम्बुलेंस को फोन नंबर जुनसुक समय चाहन सकता कम थपार व सब देखने
1: सार्वजनिक हित का उज्यालो को अनुरोध
2: क्लासिक टेको 60th एनिवर्सरी अफर जति में चाहिए खेती में पाइयो बजेट का पैकेज तपाई के रोजाई को अब इंटरनेट टीवी और वाईफाई सिक्स राउटर पनि खेती में पाइन्छ क्लासिक टेको कुनै पनि प्लान खरीद में हरेक हप्ता 3 जनालाई 3 महीना इंटरनेट बोनस र मासिक 1 जनालाई 12,000 को इंटरनेट बोनस संपर्क 9801000447 क्लासिक टेको जति में चाहिए खेती में पाइयो
3: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौं में पारस फिस्टुला फिसर लगायत का रोग दैनिक विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
4: विशेषज्ञ सेवाहरू निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक द्वारा उपचार छाल सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा
3: रोग लुकाएर नराखौं समयमै परीक्षण गरौं।
4: थप जानकारी का लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौं फोन 01-4110-6690 4110-6690
5: स्वस्थ जीवन का लागि आयुर्वेद अपनाओ।
6: घरबाट निस्किन अघि धारा बिजुलीका स्विच र ग्यासको सिलिन्डर बन्द गर्न नभुल्नुहोस्। भवितव्य र विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैनन्।
0: सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध।

0: pendapat ini maksud melat pengi istiup berkorak rakyat pasar jusi risi lalu kompeni kuopi di awas tak jusi lalu baik tak pening pening manusia kan hari baru ke tiup jadi beti titi ayun siya bazar di pabitur istan uji mimak istan mulai hamil dusik bangai katin sarkar ni istan filinak nabi rakyat wabas tak pening sasasi ke sudar matang jadi ini ada sila barawah dini kunani puji ke kusipa sa ama sarkar ni sudar dan upani kusam itu patna bunti pun sudar dan upani kusam IPO jari gani berusaha dan upani kusam dan puji memang pun maktu pun upakaru dusra bazar jati sukai gati silmaya tapani gati bazar gati silmaya nubani nipani sangkali apa tentu labina sabin dia puji bazar ku didi karan बहुत कुछ काशी करनी, तेरी बेटी को मार्केट को विकास करनी, ताकि कृषि क्षेत्र को विकास हो, तेरी बेटी मार्केट करूं, आ सुनता ना अभी अभी बोतले खरीद ले रहा, किसान का तेरी बेटी मार्केट करूंगा, स्टाफ में बनने का संपन्न, संस्था के लिए व्यवस्था बनने का निर्णय, ये जनता हितों का प्रबोध हो, वो बंगाल में चले राष्ट्रीय के लिए सप्लीमेंट्री भूमिका प्रबलता को उपलब्ध कर मार्फत आगे आगे शेयर कर्जा को माध्यम मार्फत बढ़ावा दिने काम गर्दै आएको पनि छ र प्राथमिक भूमिका भनेको सरकार र हितों का प्रबोध
1: हवस् यहाँलाई समग्र कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद
0: धन्यवाद
2: वाहनसो नेपाल राष्ट्र पञ्चायत संघ कार्यकारी निर्देशक नरभाषण थापा महासंघको प्रकाशले आजका लागि कार्यक्रम सहभागी नेपालको सुनिश्चितको साथ अर्को हप्ता अर्को आर्थिक विशेषमा चिन्तित लगाउने गरेको छ आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी सहयोग

का कारण समुद्र में देखिएको खराब अवस्था र खोज क्षेत्र को ठूलो आधार ने उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। अब खेल खबर। फीफा विश्वकप फुटबल का क्वार्टर फाइनल खेल आज रात देखि हुँदैछ। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को संग, स्पेन ने बेल्जियम संग, नर्वे ने इंग्लैंड संग तथा अर्जेन्टिना ने स्विट्जरलैंड संग प्रतिस्पर्धा करने पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात पौने दुई बजे फ्रांस और मोरक्को ने खेलने यी दुई टोली चार वर्ष अगि कतार में सेमीफाइनल में पुगे थे। इस खेल में फ्रांस ने मोरक्को

वैधानिक पाली सीटों से खरीदकारी संचालन संबंधी सूचना। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय सुलुखुम्बु में यही असार 11 गते देखि असार 15 गते सम्म तपस्वी बमोजिम को रैथाने बाली सेतु सिमी खरीद करने कार्यक्रम रहेको बेला सर्वसाधारण कृषक तथा कृषि समूहहरूलाई यसै सूचना

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुमा नगरपालिका 5 चोल कुम्बु

0: Championship. Surya Sam, the studio time.
1: It's 1 p.m. Dusha ko 1 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलह दुर्गुंडा नगर पालिका पांच सोलह कुंभ।

0: miércoles, es que un día mismo, Alejandro Polito de los Ay.
1: आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि प्रदेशद्वारा जनहितमा

0: नेपाली सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन क्षेत्र
1: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
0: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
0: टिकाऊ र भद्रो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
0: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
0: हाम्रा सेवाहरू
1: उखलढुङ्गा र खोटाङको विक्टल बजारबाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
0: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
0: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: उपभोक्ताको लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टी पर्पज सर्विस प्रणाली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजान उखलढुङ्गा
0: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888002 र 9842803000

0: 却，孙亚芳 Studio Time
1: 七点绿色和苹果节。
2: I'm Jake Kusatna, New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामाई Offset Press, सोनू दुकुन नगर पालिका पास सोलकुंबू।
0: अहिले दिवसों को तीन बजे।
1: ये समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो।
0: राष्ट्र को किसान।
1: A complete fighting solutions.

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्धता को मिलन चेतना
1: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरभरदो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नयाँ नयाँ दर्शन बजार में लन्च भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखल ढुंगा र खोटाङ को डिक्कल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंगा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखल ढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखल ढुंगा
2: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888022 र 9842808030

0: प्रतिनिधि समूह प्रधानमंत्री शाह को छलफल समस्या समाधान करने सरकार सकारात्मक रहकर भनाई चालू आर्थिक वर्ष को भुगतान होने आज अंतिम दिन हिजो एक दिन 17 अरब रूपया भाग खर्च
1: ऑस्ट्रेलिया भारत बीच यूरेनियम निर्यात समझौता
0: अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी द्वारा स्थापित सुरक्षा अंतर्गत निर्यात होने पर्ने विश्वकप फुटबल को क्वार्टर फाइनल को खेल आज रात देखि शुरू होते राति पौने 2 बजे फ्रांस और मोरक्को खेलते
1: प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट सदै हामी मदन पौड्याल र भजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। यात्रा गर्नु पूर्व सड़क र मौसमको अवस्थाबारे

0: जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोलु दुर्गुण नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: टोलू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. It's studio time.
2: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध कुंड नगर पालिका 5 सुकुम्बू.
4: अहिले तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ. अब प्रस्तुत छ आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः प्रसारण.

आंगन पर नी भई होशियारिया पूनम जोखिम टारनी भई वारी पारी झाड़ी बूटियां घास राखना साझ पर्दा घर छोड़ी गांव घूम जानू बाघ भालू गैंडा हाथी चित्त न पसे पछ